हे मेरे मालिक, इस संसार विच कौन ऐसा व्यक्ति है जेड़ा तेरी आस तो बिना जी रहे है। तेरे दर करते सब ने आस लाई हुई है। किस लिए? क्योंकि आप सब दियां आसां पूरियां कर दे हो। जेड़ा भी इस दर ते आस लैके आंदा है उदी आस पूरी हुंदी है। एवें नहीं कोई इत्थे आंदा, हर किसी दे मन दी कोई ना कोई आस जरूर है, पर शायद आस उत्थे कीती जांदी है जिथे पूरी हुंदी होवे, ते जिथे कोई पूरी ना करे उत्थे कोई आस नहीं रखदा। सानू आप ते आस है, ए गल वखरी है, आस भी कई प्रकार दी है। एक गल का ख्याल रखना, आस पक्की होवे कच्ची ना होवे। कर आसा आ

कर आसा। आयो प्रभ मांगण, मैं बड़ी आस करके ही मेरे मालिक तेरे दर तो मंगण आया। कहिंदे ने मंगिया फरीद ने भी, बाबा फरीद ने मंगिया आस लाई। लिखो हुण आस कैसी है, साडे कलजुगी जीवां दी तरह नहीं, साडी आस ते बहुत कच्ची है। दो चार वर्ष ही गुरु घर आउने आ, आस पूरी हो जाए ते ठीक है, पंजवें दिन गुरुद्वारे ही नहीं वड़दे, साडी आस ही नहीं पूरी हुई। नहीं भाई, इस दर ते ते हर किसी दी आस पूरी हुंदी है। हां ये गल जरूर होई है कि जिस वेले आस पूरी होनी सी उस दिन तू आया ही नहीं, उस दिन तू दर छड के ही चला गया। इत्थे ते रोज आ, रोज हाजरी पर, पता नहीं किस वेले अरदास मंजूर हो जानी। आस पक्की रख के बह, ए ना सोच के पूरी नहीं होई, जरूर होवेगी। हुण बाबे फरीद दे किसे आस लाउणी है,

हे मालिक मैं ए आस ला के बैठा हे प्रभु मैनू कदो गल ना लावेगा, मैं ते इस आस विच बैठा वा हे प्रभु मैनू कदो गल ना लावेगा। हुण ए आस ते पूरी ताई हो सकदी है कि मनुख पक्की आस रखे, कच्ची ना हो, इतनी पक्की

भगत रविदास जी कहिंदे ने मैं ते इसे आस ते जीउण डे तेरे दर्शन देखने ने भावे चिर बाद ही हो दर्शन तेरे जरूर करने ने भाई ये ते ताई हो सकता है मन ऐसा निश्चय यकीन विश्वास हो जाए वह भी तन श्री गुरु ग्रंथ साहब ते कि हे मेरे मालिक मैं तेरे दर्शन करना है भगत जी कहते ने कहो रविदास परो तेरी सांभा भेग मिलो जन करना बिलांबा हे मेरे मालिक जन तक तेथों दूर सा मैं देरी भी बर्दाश्त कीती है ते दूरी भी बर्दाश्त कीती पर हुण तेरी शरण विच आ गया हुण ना ते देरी बर्दाश्त हुंदी है ते ना दूरी क्योंकि दूरी मिट गई है फिर देरी क्यों भेग मिलो मैनू जल्दी मिल जन करना बिलंबा बिलंबा कहिंदे ने थोड़ी जी भी देर ना ला टेल ना ला टाइम ना ला मैनू जल्दी मिल इसलिए साध संगत आओ ये अमृत वेला भागा वालिया नू नसीब हुंदा है बहुत कर्मा वालिया नू ख्याल करिया करो गुरसिख दे वास्ते गुरु दियां हर वक्त बाहां फैलियां होईयां ने आवाज देंदे ने आए मिल गुरसिख आए मिल तू मेरे गुरु के प्यारे ओए आ भाई आ मैं तो तेरी उड़ीक विच हां मैं तेरी इंतजार पिया करना ते तू अजे सुता ही नहीं उठया जे तू सुता नहीं उठया ते पाठ कदों करेगा जे पाठ नहीं कीता ते गुरु घर कदों आवेगा ते जे गुरु घर नहीं आया ते उस मालक नाल कदों जुड़ेगा कदों दे नाल तेरी प्रीत लगेगी आवो सिख सत गुरु के प्यारे हो गावो सच्ची बाणी आओ भाई ये बाणी गुरसिख वास्ते है ते गुरसिख ने सुननी है ते आपां ये दो चीजां जरूर प्राप्त करिए अमृत ते अमृत वेला क्योंकि जद तक सिख पंथ अंदर ये दो चीजां रही ने चढ़दी कला विच रहे है जदों ये दोवें खुश गईयां ये टहिंदी कला विच तुरना शुरू हो गया साढ़े को वस्त खुश गई है ठीक है असं इन्होंने मुल्कों आते गए हैं इतने आके असी बड़ा कुछ गवाया है, पाया कुछ भी नहीं मैं नहीं कहना जिन्होंने भी वेख लो तुम मिल के वह कहना रहन मन नहीं करता मजबूरन रह रहे हैं भाई जे कोई मजबूरी है तो चलो गुरु नाल ही मिल लो गुरु घर ही आ जाओ जिथे आके कुछ देर ते मन सुकून चैन आराम मिले ऐसी गल नहीं है इत्थे रह के भी असी बड़ा कुछ गुरु को प्राप्त कर सकते हाँ आओ ये दो चीजा जरूर हासिल करो अमृत ते अमृत वेला क्योंकि जिदे कोल अमृत ते अमृत वेला है उहदे कोल सब कुछ है ते जिदे कोल दोवें चीजा खुश गई उहदे कोल कुछ भी नहीं है वह खाली है सतगुरु बख्शिश करे सतगुरु रहमत करे अज अमृत वेले तो तुसा सतगुरु दे दर ते हाजरियां भर के संपूर्ण श्री आसा जी दीवार दा कीर्तन सुन आसा दी वार दा कीर्तन ओ है धन गुरु नानक पातशाह दा हुक्म है जिहड़ा मन करके करे ते मन करके सुने ओदियां आसा पूरियां हो जांदियां ते असीं जिन्ने भी बैठे हां आस ला के बैठे हां सब को आसे तेरी बैठा सारी सृष्टि तेरी आस ते जीवत है कोई है ऐसा जिन्हों मालिक तेरी आस ना होवे हर कोई तेरी आस ला के बैंदा है आपां अरदास करिए सतगुरु साडियां आसां पूरियां करन अपने दर ते हाजरी लाउंदे होए आओ प्यार शब्दा सहित सारे मिलके रसना नूं पवित्र करो एक दो मिनट आपां सिमरन विच भी लाइए।

अंदर जाके सो जाएंगे। ये भी नहीं पता कि अपने घर नूं मैं आप ही अग ला बैठा ते अंदर आके सो गए। जे घर सड़ेगा तो मैं भी नाल ही सड़ांगा। एहो जे इंसान केड़े हुंदे।

केरल दा राजा एदे कार राजकुमार ने जन्म लिया। ए राजकुमार तिना दिना दा पड़ोसी राजे ने हमला कर दिता। केरल दा राजा अपने देश की रक्षा करता होया शहीद हो गया। जो समय का रवाज सी राजे दे नाल राणी भी तिना दिना दे बच्चे इस राजकुमार नो छड़ के राजे दे नाल सती हो गई। दुश्मन का कब्जा केरल ते हो गया। जेड़ी दाई इस बच्चे की देखभाल करती सी बड़ी सियानी निकली। उस दाई ने यह विचार कीती जे ए राजकुमार दुश्मन राजे दे हाथ लग गया तो उन्हें इनू मार देने, क्यों ना मैं इनू इथों ले चला। उस दाई ने इस राजकुमार नूं जिदा नाम भगत चंद्रहांस है कपड़ियां विच लपेटिया चोर दरवाजे तों निकल के दूसरे राज चंदनपुर चली गई। चंदनपुर एक घर ले लिया, इत्थे रहन लग पई। मंग तंग के लियाना अपना पेट भरना इस यतीम राजकुमार चंद्रहांस की पालना करनी। चंदनपुर का जिहड़ा राजा सी बड़ा धर्मात्मा सी। इसे राजे का वजीर जिदा गुरबाणी विच नाम त्रिष्टबुद्धि आया। ये वजीरे समझदा सी कि राज

क्योंकि मन माड़ा कर्म भी ये दे माड़े सोचदा भी माड़ा है इस वास्ती ता एहो जी लोका वास्ती।

पांच साल दा हो गया, गलियां विच तुरिया फिरदे, कुदरती एक संत मंडली शहर दे बाहर आई, जेड़ा मदन सी साधु सुभा दा बंदा, दूसरा भरा अमल ए अमलां विच लगा रहिंदा सी, जिथे महलां विच राग रंग हुंदे सन उथे मदन दे सदका कदी कदी कीर्तन भी होया करदा सी। संत मंडली महलां विच आंदी, कीर्तन करदी ते वापस अपने टिकाने चली जांदी। एक दिन चंद्रहांस तुरदा तुरदा संतां दे डेरे चला गया, जेड़े मुखी संत सन उन्हां चंद्रहांस नूं देखिया, मन बड़ा खुश होया, अपने कोल बठा लिया। एक राजकुमार सी, मोचित लगदा सी, संतां कोल बैठा रहा। हुण चंद्रहांस दा रोज दा कम बन गया, रोज संतां कोल आ जाना, इन्ना प्यार बनिया कि हुण संतां कोल ही रहण लग पिया। उधर मदन ने महापुरशां नूं महलां विच बुलाया, कीर्तन तों बाद लंगर शुरू होया, पंगतां लगियां। जेड़े मुखी संत सन चंद्रहांस उन्हां दे कोल बैठा सी, सारे लंगर छकन लग पए। त्रिष्ट बुद्धि वजीर

कुछ और आवे संत जी हसन लग पे त्रिष्ट बुद्धि नु कुछ बुरा लगा कहन लगा संत जी मैं पूछे है

चंद्र हंस कहिंदा मैं तुहाडा की बिगाड़िया, तुसी मैनू क्यों मारन लगे। जलाद कहन लगे तू साडा कुछ नहीं बिगाड़े। संत कहिंदे ने कि तू चंदनपुर दा राजा बनना है, इस करके वजीर तेनू मरवा रहे। चंद्र हंस कहन लगा ठीक है, तुसी मैनू मार दियो, पर जे दो घड़ियां समा दियो तां मैं अपनी भगवान नू याद कर लूंगा। जलाद कहन लगे इन्हें किड़ा किधरे भज जाने। जलादां दे मन विच कुछ दया आई, कहन लगे ठीक है काका, तू दो घड़ियां भगवान नू याद कर ले। चंद्र हंस दे गल विच इक थैला सी जिहड़ा हर वक्त तो गल विच रखिया करदा सी। विच एक ठाकुर सी नदी विच पानी लैके पोचा मारिया, हाथ जोड़ के चंद्र हंस खड़ा हो गया ते कहंदे भगवान। संत जी कहंदे सन कि जिहड़ा भी भगवान नू मन करके याद करदा है भगवान उहदी रखिया करदा। मेरा तां कोई भी नहीं, ना मां है ना प्यो, ना कोई भैण ना भरा, ना कोई रिश्तेदार है। भगवान कृपा कर, मेरी रखिया कर। लिखे है कि कई बारी चंद्र हंस इस तरह हाथ जोड़ के बहिंदा हुंदा सी ते कृष्ण भगवान ने भी बालक दा रूप धार के कोल बह के बांसुरी वजाया कर, क्योंकि भगतां दा मन बड़ा कोमल हुंदा है, साफ हुंदा है। तेरा भी जिन्हां दा मन कोमल होवे।

चंद्र हंस अरदास करन लग पे। उस परमेश्वर ने जलादां दे मन विच दया पा दित्ती। जलाद जिहड़े सन एक दूसरे नूं कहण लगे, इस बच्ची ने साडा की विगाड़िया। सारा शरीर चंद्र हंस दा उन्हां ने देखिया। एक पैर दियां छे उंगलां सन ते कहंदे ने छे उंगलां चंगियां नहीं हुंदियां। कहण लगे, वजीर नूं तां एक अंग दिखाणा है शरीर दा। उन्हां पैर दी उंगल एक कट ली, खून वगन लग पे। उंगल लै के चंदनपुर वजीर कोल जा पहुंची। आखे, चंद्र हंस नूं मार के असी नदी विच सुट दित्ता, इनाम लै लिया। वजीर खुश हो गया, चंद्र हंस मर गया। उधर चंद्र हंस सारी रात

पर डर नहीं मन विच महापुरुषां दे कोल रहण करके रब दे भरोसा हो गया सी। चंदनपुर दे कोल कुंतलपुर एक छोटी रियासत सी। एदा राजा कुलिंद

रस्ते दे विच चिट्ठी खोल के ना पढ़ी, किसे दी चिट्ठी पढ़नी महापाप हुंदा। चंद्रहास ने वह चिट्ठी पग विच टुंग ली, घोड़े ते चढ़ के ए चंद्रहास चंदनपुर नू तुर पिया। ज्यों सवेर दा तुरिया, शाम दे वेले चंदनपुर जा पहुंचे है।

चौथा कहन लगा तुहानू नहीं पता मुंडे बड़े शैतान इना मुंडिया नी कंध टप के गन्ने तोड़ के ले जा करने ए सुन के पहले नु गुस्सा आया कहन लगा ठीक है कमाद से फिर लावांगे गन्ने फिर बीजांगे आओ पहला पिंड वाले नहीं देख ली ए चारो जने उठे पिंडा च मकान ते कच्चे ही होंदे पराली ना कठी कीती सारिया दे घरां दे अगे पिछे पराली कठी कर दी रात दा वेला सी ते पराली नू अग ला दी लोकी जिहड़े सन घर छड़ छड़ के बाहर नू भजन लग पए ते ए चारो जने चौंक च खलोते कहण आओ तोड़ो गन्ने देखदे आं तुसीं हुण किवें साडे गन्ने चूपदे हो किवें गन्ने भन्नदे तो एहो जिहड़े मूर्ख इंसान ने उहनां दा वी कदी भरोसा नहीं करना चाहीदा अपने आप नूं सियाणे समझणगे दूसरिआं नूं मूर्ख दूसरिआं वल देख के हसदे ने पर आप काणी कोई चंगा काम करदा उहनूं ते माड़ा कहणगे

किस बारे ना माड़ा सोचो ना किसे नू माड़ा कहो। दसवां नवां दी किरत करो, हर इंसान दे नाल प्यार करो, हर एक इंसान दे विच परमेश्वर वसदे है। ते जदों आपां इह समझ लवांगे सारे विच परमेश्वर है, जे किसे बारे माड़ा सोचांगे तां समझो फिर असी रब बारे माड़ा सोचदे हां। इस करके सब नाल प्यार करो, जदों सारे नाल प्यार करोगे तां सारे विचों तुहानू रब दी झलक नजर आवेगी।

जुड़ा जो खेड एक बीबी खेड गई है। एस दा मन इसे तरह साफ है जदा अतत साफ है, एस दा दिल इदा ही महक रहा है जिस तरह इस वेले अतर की सूंदी चारों पासे फैली हुई है। पर कहन लगे वो तो रहनगे, गरीब भी रहनगे अमीर भी रहनगे पर असी नहीं होवांगे। जो खेड बीबी इस वेले खेड गई है वह खेड गई है, उस सुनहरी मौके का फायदा उठा गई है। तो साध संगत जी, इस सुनहरी मौके का फायदा कोई वड्डे भागां वाला उठाता है। फिर जिस तरह भाई मती दास जी ने इस सुनहरी मौके का फायदा उठाया है, कमाल कर साध संगत जी इशारा किया। पर पिता जी समझाते हुए अगे दस की रहे हैं, कहन लगे देख पुत, गुरु तेग बहादुर साहब प्रवेश कथे किते हैं, गुरु ग्रंथ साहब कलयुग के बहुत नाम के जहाज हलक पलट के रक्षक लोक पर लोक के सहायक, दसों पातशाहियां दी हाजर नाजर जाग दी ज्योत साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब, दसों पातशाहियां प्रवेश कथे कीती। पिताजी कहन लगे कि जिस वक्त भी रब आप कोई ग्रंथ लिखदा या लिखांदा है तो आप विच समा जांदा है। बाबा नंद सिंह साहब ने कहा एक गुरु ग्रंथ साहब गुरु अर्जन पातशाह का प्रत्यक्ष स्वरूप है, दसो पातशाहियां दी प्रगट गुरंती दे। बाबा नंद सिंह साहब ने फरमाया कि कदी साडी जबान गलती नाल भी साडी जीवा रसना गुरु ग्रंथ साहब दे बारे अक्षर और कागज का लफ्ज इस्तेमाल करे, साडी जीवा सड़ जाए, साडी रसना सड़ जाए। साध संगत जी कहन लगे ए जिंदा जागदा बोलदा गुरु नानक है। तो फिर पिताजी कह की रहे हैं, कहंदे देख पुत ए चीज चेते रखी, ऐस वेले गुरु ग्रंथ साहब दे विच मेरे गुरु तेग बहादुर साहब जहरा प्रवेश किते हुए हैं और उथे विराजमान हैं और उथे विच रहे हैं। कह लगे बाबा नंद सिंह साहब दा पूरे जीवन दा एको ही संदेश है कि ए गुरु ग्रंथ साहब ए जिंदा जागदा बोलदा गुरु नानक, ए गुरु ग्रंथ साहब एक सुनहरी मौका बख्श रहा है। कहंदे पुत अपने सुवास गुरु ग्रंथ साहब दे लेखे विच ला दे, इस सुनहरी मौके नू जाया ना होन दई, ए जन्म साहब दे चरणा दे लेखे विच ला दे। कहन लगे साडे साहब गुरु तेग बहादुर साहब साक्षात उथे विराजमान हन, बाबा नंद सिंह साहब दा सारा जीवन ए पकार पकार के इस दुनिया नू संदेश दे रहा है कि ग्रंथ साहब एक जीवंदा जागदा बोलदा गुरु नानक है।

पर कोई न जाने तुम्हारा अंत पण को आहारी तेरो नाम त्यायत है पूर्व पलाऊ काम रूपों कमाऊ सर्व ठार में बराजे जहां जहां जायत है सर्व ठार में बराजे।

कागद दीप सवै करके अर सात समुंदर न की मस कह काट बनास्पति सगरी लिख बेहू के लेखन काज बने हों लिख बेहू के लेखन काज बने हों सा

गावन तुम नोरो मोहनिया मन मोहन गावन तुम नोरो मोहनिया मन मोहन सुरगा मच प्याले